सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: मॉर्निंग मैम.
1: गुड मॉर्निंग.
0: ये नाम क्या है आपका?
1: मैं तो कुछ नहीं बोल रहा मैम.
0: जी मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: हेलो मैनी नमस्कार जी
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिल्लू केड़ाजे।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कल तक रब को भूला था।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: यू वेलकम सर।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

वक्त हो चुका है 10:25 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है और आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। पुणे प्रयाश करे 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: जय किशन नाम है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: मैं गंगापुर सिटी जीआर गारमेंट।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: ये पुराना गाना मैडम, सात सहेलियाँ खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कॉन्फ्रेंस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: यू वेलकम सर।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89

0: ओके तो सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा ना रेडी डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सभी दोस्तों को और आपको पूरे टीम को।
0: धन्यवाद सर।
1: मैं आपके माध्यम से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, भारत में बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे रेडियो के सारे श्रोताओं के और हमारे प्रोग्रामों को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात लगी हमें।
1: इतने दूर से हम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐप पे आप ऐप पर अपना प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
0: ओके
1: साउंड क्वालिटी बराबर चल रही
0: है। ओके सर, हमारे आपकी फरमाइश करिएगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।

0: गुड मॉर्निंग मैम.
1: गुड मॉर्निंग जी, नाम क्या है आपका?
0: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से.
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुझे मैंने ले लाया एक बार.

0: नाम मेरा मैम राम सिंह है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: ये गंगापुर सिटी जीआर गारमेंट्स।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज मैम भजन सुनेंगे, वृंदावन जाऊंगी, सखीरी वृंदावन जाऊंगी,
1: सखीरी मोए वृंदावन जाऊंगी। ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी कैलाश।
0: सना जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: बहुत जताते हो चाह हमसे।
0: बहुत जताते हो चाह हमसे
1: जी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: श्री राधे राधे मैम।
1: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है नरेंद्र कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी जी आर गार्मेंट।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जा रहे सजना नहीं करना तेरा एक बार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: समझो।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका? गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम अक्षत है, मैं गंगापुर बिहार गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: जी, गाना है काली जादू, मिस संगीता है।
2: गाने के बोल?
1: काली गाड़ी।
2: काली गाड़ी,
1: हाँ
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

वक्त हो चुका है 11:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: हाँ जी जी जी
0: कहाँ से बात कर रही हैं? कौन सा गाना सुनना चाहिए? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: आरती वर्मा, लाल रोड से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: केसरी के लाल।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है मैम, थैंक यू।
1: यू वेलकम।
2: ना देखी कहीं नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।
3: ओके।

0: हेलो।
1: हाँ जी,
2: जय सियाराम मैम।
1: जय सियाराम, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम गुल्लू वर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: मैं इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गंगापुर सिटी श्रीराम ड्राई क्लीनर से बोल रहा हूँ मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: बालाजी आ जाओ एक बार भजन सुनूंगा।
1: ओके मैम, ओके। सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

सुबह तो चुका है 11:19 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आर

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम रविंद्र मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: रंगपुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: लाल परी।
0: लाल परी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: नाम रविंद्र मीणा।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: रामपुर।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?

0: लाल परी।
1: लाल परी हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: आशीष मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: लेकिन छुप छुप कर मिलने का मजा ही अलग आता है।

0: सुना दो मैडम?
1: हाँ जी, नाम बताइए आपका।
0: रतनलाल पुलिस चौकी के पास।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर गा रहे।
1: सुना रहे आपकी फरमाइश।

0: नमस्ते नमस्ते दीदी, पुष्कर शर्मा बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से।
1: हाँ जी सर, और कैसे हो?
0: बिल्कुल कृपा है भगवान की, आप दीदियों की दुआएं हैं तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। बड़े समय के बाद बात हुई आपसे।
1: हाँ जी सर, गर्मी तो बहुत तेज हो रही होगी सर उधर।
0: दीदी जी मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे यहाँ गर्मी होती नहीं है। जब हम रात को सोते हैं तो कंबल लेके सोते हैं, और
1: इलाका होएगा सर वहाँ का,
0: हमारे यहाँ गर्मी नहीं होती है। हम कूलर वगैरह फैन वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। आप भी जम्मू कश्मीर में आइए और डोडा में जरूर आना।
1: मैंने सुना है जम्मू कश्मीर में कई जगह तो ना गर्मी हो रही है इस टाइम। मेरे पास कौन से आते हैं ना वो भी बताते हैं कि कई जगह तो गर्मी भी है
0: जम्मू के, जो जम्मू जो है ना जम्मू

0: ये थर्ड इलाके है।
1: हाँ जी, यही तो मैं बोल रही हूँ कि गर्मी, मैंने भी सुना था कि गर्मी भी पड़ती है वहाँ पर, थोड़े आस पास के छोटे मोटे इलाके है ना उनमें होती है।
0: हाँ उनमें होती है। जी जी जी जी जी जी।
1: गाना सुनना चाहोगे सर आज?
0: आज गाना सुनूंगा मैं राजा और रंग फिल्म का।
1: गाने के बोल?
0: वो लता मंगेशकर की आवाज में मैं अपनी माताओं को सभी दीदियों को गाना डेडिकेट है कि ये गाना मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि इसमें माँ का शब्द होता है, तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, क्योंकि माँ से बड़ी कोई चीज ही नहीं है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो आपके माध्यम से अपने अंकल जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे अंकल जी है जम्मू से केशव शर्मा, उनको भी मैं अपनी ओर से नमस्कार करना चाहूंगा और आपको भी एक बार फिर से
1: धन्यवाद सर।
0: ओके दीदी, जय माता।

0: और आपको भी एक बार फिर जय माता।
1: हेलो
2: हेलो, नाम क्या है आपका? मीनाक्षी। कहाँ से बात कर रहे हो? रेलवे स्टेशन। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: पूछ मेरे महबूब का नाम।
2: ओके, सुना रहे हो। फरमाइश करेगा ना। हेलो।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जन्नत सजाई है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नाम क्या है सर आपका?
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम।
0: धन्यवाद सर। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ये सुना पुरानी पिक्चर है खट्टा मीठा, उसका गीत है मम्मी ओ मम्मी, ये वो लगाने।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नाम क्या है सर आपका?
1: दाऊ खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी लखेरे कोपी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के।

0: दिल्ली।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं तो फिर मुझे और क्या चाहिए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: रजा खान पुरानी नाम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ऐसा हो रहा दिल आखिर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: आश्रम जाना है
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: गाना सुनना चाहूंगी
0: जल सूरज देखो मोहन की।
1: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:13 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मगन मीणा जी की। मगन मीणा जी ने हमें कॉल किया है करौली रोड गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: ऐसे नाम सुना रहे हैं आपके सर।
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगा पुजी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गुस्ताख दिल बेताब है तेरे लिए।
0: ऐसे नाम सुना रहे हैं आपके सर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:35 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं 1 बजे नए तरानों के साथ। सुनते रहिए बॉलीवुड सॉन्ग।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे नहीं तरह ने कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, नए तरानों के बीचों में कुछ खट्टी मीठी बातें और वार्तालाप।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: मैं प्रेरणा चंदेल, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है। विषय है महिलाओं और पारिवारिक समस्या, जिम्मेदारियाँ। महिला परिवार की आधारशिला होती है। वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई भूमिकाओं का संगम है। वह बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ के रूप में परिवार को जोड़ने का कार्य करती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग, संस्कार एवं अनुशासन बनाए रखने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार की धुरी है महिला। किसी भी परिवार की सफलता और खुशहाली में महिला का विशेष योगदान होता है। वह घर के छोटे बड़े सभी कार्यों का प्रबंधन करती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सेवा, घर की व्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन जैसे अनेक कार्यों को वह एक साथ संभालती है। महिलाएं अपने धैर्य, त्याग और समर्पण से परिवार को मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि महिलाओं को परिवार की धुरी कहा जाता है। बेटी के रूप में जिम्मेदारियाँ। एक बेटी परिवार में खुशियों का स्रोत होती है। वह अपने माता पिता का सम्मान करती है और घर के कार्यों में सहयोग देती है। आज की बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। बेटियां अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के साथ साथ समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पत्नी के रूप में जिम्मेदारियाँ। विवाह के बाद महिला परिवार के नए वातावरण में स्वयं को ढालती है। पत्नी के रूप में वह अपने जीवन साथी का सहयोग करती है और परिवार के विकास में भागीदार बनती है। एक समझदार पत्नी परिवार में सामंजस्य बनाए रखती है। वह सुख दुख में अपने पति का साथ देती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाती है। माँ के रूप में जिम्मेदारियाँ। माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा माना गया है। बच्चे के जीवन की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। वह बच्चों को अच्छे संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। माँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह बच्चों को सही और गलत की पहचान कराती है तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा देती है। बहू के रूप में जिम्मेदारियां।

में जिम्मेदारियां। भारतीय परिवार समस्या व्यवस्था में बहू का विशेष स्थान होता है। वह नए परिवार में जाकर सभी सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। बुजुर्गों का सम्मान करना, परिवार की परंपराओं को समझना और घर के वातावरण में सकारात्मक बनाए रखना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आज के समय में बहुएं केवल गृहिणी ही नहीं बल्कि शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियरिंग अधिकारी और उद्यमी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। बुजुर्गों की देखभाल में महिलाओं की भूमिका। महिलाएं परिवार के बुजुर्गों सदस्यों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे उनकी दवाइयां, खान पान और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। बुजुर्गों के अनुसार और आशीर्वाद, अनुभव, आशीर्वाद और परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं। महिलाओं के प्रयासों से परिवार में बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। आर्थिक प्रबंधन में महिलाओं का योगदान। पहले महिलाओं की भूमिका केवल घर तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज महिलाएं आर्थिक रूप से भी परिवार को मजबूत बना रही हैं। वे नौकरी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और स्वरोजगार के माध्यम से परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। साथ ही घरेलू बजट बनाकर खर्चों का संतुलन भी बनाए रखती हैं। महिलाओं की आर्थिक समझ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होती है। कार्यरत महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियां। आज बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी, व्यवसाय कर रही हैं। वे घर और कार्यस्थल दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं। सुबह घर के कार्यों से लेकर कार्यालय के दायित्व तक महिलाएं निरंतर कार्य करती। यह दोहरी जिम्मेदारी कई बार शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बनती है। इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी घरेलू कार्यों में सहयोग करना चाहिए ताकि जिम्मेदारियों का संतुलन बना रहे। आधुनिक समय में बदलती सोच। समय के साथ समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब परिवार की जिम्मेदारी केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों का साझा जिम्मेदारी मानी जाती है। पुरुष भी बच्चों की देखभाल, घरेलू कार्य और परिवार के प्रबंधन में भागीदारी निभा रहे हैं। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। महिलाओं के सामने चुनौतियां। हालांकि महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू और व्यावसायिक जिम्मेदारियों का संतुलन, समय की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक दबाव, कार्यस्थल पर चुनौतियां, परिवार और करियर के बीच में संतुलन। इन चुनौतियों का समाधान परिवार और समाज के सहयोग से भी संभव है। महिलाओं के स्वास्थ्य का महत्व। परिवार की देखभाल करते करते महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को अनदेखी कर देती हैं, लेकिन स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है। महिलाओं को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिवार और समाज का दायित्व है। महिलाओं की जिम्मेदारियों को समझना और उनका सम्मान करना पूरे परिवार और समाज का कर्तव्य है। महिलाओं को शिक्षा के अवसर दिए जाएं, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, घरेलू कार्यों में सहयोग किया जाए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, उनके कार्यों की सराहना किया जाए। जब परिवार महिलाओं का सम्मान करेगा तभी समाज और राष्ट्र का विकास संभव होगा। महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक जिम्मेदारियां। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, शिक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान प्राप्त करना है। एक सशक्त महिला अपने परिवार को बेहतर दिशा दे सकती है। वह बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर संस्कार और उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकती है। निष्कर्ष। अंत में यही कहा जा सकता है कि महिलाएं परिवार की शक्ति, संस्कारों की वाहक और समाज की प्रेरणा है। उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने में परिवार और समाज का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। आइए हम सभी महिलाओं के योगदान का सम्मान करें।

किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का सबसे बड़ा आधार उसकी महिलाएं होती हैं। यदि महिलाएं शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त हो तो परिवार मजबूत बनता है, समाज विकसित होता है और राष्ट्र प्रगति के नए आयाम स्थापित करता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी देश की वास्तविक उन्नति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखकर किया जा सकता है। सशक्त महिला का अर्थ, सशक्त महिला का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम महिला नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और सम्मान, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी अधिकारों की जानकारी, समान अवसर और समान सम्मान। जब महिला अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है तब वह वास्तव में सशक्त कहलाती है। महिला परिवार की नींव, महिला परिवार के आधारशिला होती है। परिवार के निर्माण, पालन पोषण और विकास में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक महिला जब शिक्षित और जागरूक होती है तो वह बच्चों को बेहतर शिक्षा देती है, परिवार को अच्छे संस्कार प्रदान करती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखती है, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार वह सशक्त महिला पूरे परिवार को सशक्त बना देती है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी। शिक्षा किसी भी व्यक्ति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षित महिला अपने अधिकारों को समझती है, स्वास्थ्य और पोषण को महत्व को जानती है, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाती है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। आज भारत में बेटियां विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, प्रशासन, सेना, खेल, व्यवसाय सहित हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है। यह शिक्षा की शक्ति का ही परिणाम है। आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे परिवार को मजबूत आधार प्रदान करती है। आज महिलाएं सरकारी सेवाओं में, निजी क्षेत्रों में, कृषि में, उद्योगों में, स्वरोजगार में, डिजिटल व्यवसायों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जब महिला कमाने लगती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बच्चों को शिक्षा बेहतर होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। परिवार की समृद्धि में महिलाओं की भूमिका। परिवार की खुशहाली और समृद्धि में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महिला घरेलू बजट का प्रबंधन करती है, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करती है, बचत की आदत विकसित करती है, बच्चों के भविष्य की योजना बनाती है, परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए रखती है। यही कारण है कि जहां महिलाओं को सम्मान और अवसर मिलते हैं वहां परिवार अधिक संगठित और समृद्ध होता है। बच्चों के भविष्य निर्माण में महिलाओं का योगदान। कहा जाता है कि एक माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। बच्चे अपने जीवन के प्रारंभिक संस्कार माँ से ही सीखते हैं। माँ बच्चों को अनुशासन, नैतिकता, ईमानदारी, सहनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी की शिक्षा देती है। यदि माँ शिक्षित और जागरूक होगी तो अगली पीढ़ी भी जागरूक और जिम्मेदार बनेगी। स्वास्थ्य और पोषण में महिलाओं की भूमिका। स्वस्थ परिवार के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महिला परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित भोजन तैयार करती है, बच्चों के पोषण का ध्यान रखती है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाती है, बीमारियों की रोकथाम में सहयोग करती है। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकती है। ग्रामीण महिलाओं का योगदान। भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण महिलाएं खेती में सहयोग करती है, पशुपालन करती है, घरेलू कार्य संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देती है। ग्रामीण महिलाओं का योगदान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका। महिलाओं का योगदान केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वे राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक, पुलिस अधिकारी, उद्यमी, जन प्रतिनिधि के रूप में देश की प्रगति में योगदान दे रही हैं। उनकी प्रतिभा और मेहनत राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक बन रही हैं। महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका। आज महिलाएं नेतृत्व के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही है। पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं की भूमिका भागीदारी बढ़ रही है। महिला नेतृत्व सामाजिक विकास को

जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तथा उनका सशक्तिकरण और अधिक प्रभावी होगा। पुरुषों की सकारात्मक भूमिका। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं है, पुरुषों का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। जब पिता बेटी की शिक्षा का समर्थन करता है, पति पत्नी के सपनों को सम्मान देता है, भाई बहन के अधिकारों की रक्षा करता है तथा समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। समानता का अर्थ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग और सम्मान है। डिजिटल युग और महिला सशक्तिकरण। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, घर बैठे व्यवसाय कर रही हैं, डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रही हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रही हैं। तकनीक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित करनी होगी। जब हर बेटी शिक्षित होगी, हर महिला सुरक्षित होगी, हर महिला आत्मनिर्भर होगी, हर महिला को सम्मान मिलेगा, तब भारत वास्तव में समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। निष्कर्ष। प्रिय श्रोताओं, महिलाएं केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की शिक्षा है। एक सशक्त महिला अपने परिवार को समृद्ध बनाती है, बच्चों का उज्जवल भविष्य तैयार करती है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम महिलाओं को सम्मान दें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए संकल्प लें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां महिला सुरक्षित, सम्मानित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। याद रखिए, यदि एक महिला सशक्त होती है तो एक परिवार सशक्त होता है, यदि परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तब राष्ट्र समृद्ध बनता है। सशक्त महिला, समृद्ध परिवार, समृद्ध राष्ट्र। धन्यवाद। जय हिंद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
2: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
1: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
2: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: तो वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू स्माप कीजिए नए तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी।

0: जाएगी।
1: और बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET.
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों भी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिजरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधेपुर से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी सर, नाम क्या है आपकी?
1: राज सिंघानिया।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मैं कर रहा हूँ बॉम्बे से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: सुना रहा हूँ पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैं ब्रज रेडियो सोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा से।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: अमिताभ बच्चन की आवाज में पिडली सी बातें पिडली सी रातें।
0: पहली सी बातें पहली सी रातें,
1: पिडली पिडली
0: पिडली।
1: जी
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जी सर, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: भाभी जी से चौधरी आज कर रहा हूँ
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना बढ़िया लाए
0: जी, बताइए।
1: बाहों में तेरी मस्ती के डेरे।
0: बाहों में तेरी मस्ती के
1: डेरे।
0: मस्ती के डेरे
1: जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: हेलो
1: जी, नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: साबिर बोल रहा हूँ। जैसे मैदान से
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: ना इतना सितम मुझ पर आया करो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

नादान दीवाने, तरस खा जिंदगानी पर, अरे नादान परवाने, रहम था नौजवानी पर, ना ले तू नाम

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर?
0: मैम
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है ये सलमानी मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: टूलियर हिमापुर सिटी से मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं आप पहली बार दिल की बात की है।
1: कौन सा सर?
0: आज पहली बार दिल की बात की है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव भजरका से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना ये है सर के वो हाथों में आ गया रुमाल।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ओके, थैंक यू।
1: वेलकम।

0: हेलो,
1: नमस्कार बहन जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिंडुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरे डर को छोड़ चले।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फॉर्चुनर।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तो बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगापुर से।
1: कौन से गाने सुनना चाहोगे?
0: तुम्हें और क्या दूँ की सेवा।
1: ओके सर, तुम्हारे
0: हमारी उम्र लग जाए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मनीषा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जिंदगी में।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम पायल जाव है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: ओके मैम, सुन।

0: नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात करूँ? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल परदेसी होगा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSP।

वक्त हो चुका है 5:14 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आपने मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो टीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। कई बार इतिहास की चीजें जानने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार क्यों जाना मैंने ये, ट्यून इन कर रखा अपनी 89.6 रेडियो डीएस। और एक जमाने में लोग केचप यानी टमेटो सॉस केचप को बेचते थे ऐसे मेडिसिन, दवाई के रूप में बिकता था केचप। हाय हाय हाय हाय, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके कानों से खून निकल रहा हो, तो फिर रुक जाओ, मैं आपके कानों का इलाज करता हूँ। बैक टू बैक कुछ अमेजिंग गाने आपके लिए प्ले करने वाला हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे,
1: गंगापुर सिटी की धरती।

देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन अगर कोई भी है तो फिर ये खबर आपके लिए। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और टिल डेट 2024 चालू हो चुका है। और कौन सी खबर है भैया? हमारे बगल में, पड़ोस में जो यूएस है, यूएस का प्रेसिडेंट आज तक जो भी बना है वो कभी भी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे नहीं थे। यानी किसी का बड़ा भाई था, किसी का छोटा, किसी की बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन। अगर आप यूएस जाके वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो तो फिर आज का शो मेरा यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो बैक टू बैक अमेजिंग कुछ गाने आपके लिए प्ले करके जा रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: भगवत गीता की एक बात मुझे बार बार याद आती है। मैं हूँ आरजे खुशी और हर दिन की तरह आज की भी शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ। अब सोचे तो पानी में कोई स्वाद होता ही नहीं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक लाकर दे, आइसक्रीम लाकर दे, पिज्जा बर्गर लाकर दे, तो क्या आपका मन भरेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको उस वक्त केवल पानी की जरूरत होगी। जो काम पानी कर सकता है वो दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी तरीके से हार जाएं, आपको कहीं से संतुष्टि ना मिले, तो केवल और केवल भगवान का नाम आपका सहारा बनता है। तो उस नाम को लेने से कभी ना चूके और जब मौका लगे तब उस नाम को जरूर ले। हरि कृष्ण राम, जो आपको प्रिय हो। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: लोग कहते हैं कि एफडी करने में ज्यादा फायदा नहीं रहा है। मैं हूँ आरजे खुशी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी एफडी करना कोई बुरी बात नहीं है। मान लीजिए कि आपके साथ में 1 लाख रुपए हैं, अगर आप 1 लाख की एफडी करेंगे तो हाँ नुकसान है, एफडी करें तो सोचिए कितना फायदा है ना। तो एफडी इतनी भी खराब नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बस उसका सही इस्तेमाल करना हमें आए। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: घर तो हम साफ करते ही रहते हैं, खुद भी नहा लेते हैं, लेकिन फिर भी पता है कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया हम तक पहुंच ही जाते हैं। मैं हूं आरजे खुशी। पता है क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को हम कभी साफ नहीं करते, जो ईयरफोन हम अपने कान में लगाते हैं उनको कभी साफ नहीं करते, और इन्हें साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उन सबकी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी घर की और हमारी खुद की सफाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इन्हीं चीजों का करते हैं। जैसे गेट खोलते वक्त जो डोर नॉब है उसका साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज है जिसको हम बार बार हाथ लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसका भी साफ होना बार बार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बाकी सफाई के साथ साथ क्यों ना इन चीजों की भी सफाई की जाए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

चाहे आप किसी को साथ न लाया, मौतक पर जब मैंने अपना कब्जा जमाया और दोनों चूहों पर अपना जाल बिछाया।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ आपां नूं।
1: वो तो करना पऊगा जी, कुछ हुंदे सदा बहार, जिहड़े खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जांदे आ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप सुन रहे हैं रेडियो DS89.6 FM रेडियो, जहां पर हर धड़कन के साथ जुड़ी है आपकी बातें और आपके जज्बात। मुस्कुराते रही है, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना। मैं हूं आपका आकाश और सुनते रहिए रेडियो DS89.6 पर न्यू सॉन्ग।

दोस्तों, घड़ी की सुइयां रात की ओर बढ़ रही है और इसे शांत से माहौल में बस एक बात कहना चाहूंगा, अपने सपनों को कभी सोने मत दीजिए। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।